0: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा. रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून. टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4. रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coe usmanabad.ac.in वेबसाईट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता. ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. ऐकत रहा, आनंदी रहा.
1: तुम्हाला माहित आहे का, केंद्र सरकारने लहान उद्योजकांसाठी 40 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे तारण मुक्त मुद्रा कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. ही रक्कम कुवेत सारख्या देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जवळपास 3 पट इतकी आहे.
2: करोडो छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर.
3: 12 वर्षे विश्वासाची, विकासाची, जन कल्याणाची.
4: अगर इमा सोलर पॅनल बसवून घे, सोलर पॅनल बसवून घे ना. कधीपासून सगळे मित्र मैत्रिणी मला सांगत होते, पण मी ऐकलं जेव्हा पंतप्रधानांनी सांगितलं.
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पॉवर से बिजली बिल 0 करने का भी है.
4: मी पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरून सोलर पॅनल बसवले आणि माझं वीज बिल 0 आलं. तुम्हीही बसवून घ्या.
5: पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करा pmsuryaghar.gov.in.
6: मित्रांनो, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. मित्रांनो, तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत जाणून घेत असतो आपण अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास ज्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून आपलं शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं आणि आता आयुष्यामध्ये यशाच्या मार्गावर असतात. त्यांचं हे जे यश असतं, त्यांचं जे हे मार्गक्रमण असतं, ते आपल्यासाठी प्रेरणादायक असतं आणि म्हणूनच तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपण अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास जाणून घेत असतो. आज आपण रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये निमंत्रित केलेला आहे मिसबा मोरवे यांना. त्या 2022 कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंगमधून पासआउट आहेत. आता सध्या ते कॅप जेमिनी या कंपनीमध्ये पुण्यामध्ये कार्यरत आहेत आणि त्याच्या अगोदर त्यांचा 11-12 एज्युकेशन हे भोसले हायस्कूलमध्ये झालेलं आहे. मिसबा, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ रेडिओ तेरणा के स्टुडिओ में.
7: थँक्यू
6: मिसबा. जैसे आज आप कॉलेज पे आई हो, जैसे 2022 में पास आउट हो, तो अभी अभी आप पास आउट हो, तो एक 2 से लेकर 3 साल हो रहे, तो आप फिर ये 3 सालों में पहली बार आई हो इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में. अच्छा, तो आपने कैसे ये सोच लिया था कि आपको तेरणा इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ाई करनी है?
7: ये आउट ऑफ होम टाउन नहीं जाना था. एक ही कॉलेज है यहाँ पे और वो भी अच्छा ऑटोनोमस हुआ था तब, तो इसलिए यहीं पे एडमिशन ले लिया.
6: अच्छा अच्छा.
7: बीटेक भी स्टार्ट हो गया था यहाँ पे वो टाइम पे. न्यू.
6: अच्छा, तो आपकी जो पहली पढ़ाई है 11th-12th की, वो भोसले स्कूल में हो गई थी, तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग से पहले उसके बारे में बोलिए कि आपने 11th-12th आपका कैसा रहा था और आपने कब ये दिमाग में ले लिया कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है?
7: 10th में अच्छे परसेंटेज आए थे, बट 11th-12th में इतना ये नहीं था कि क्या करना है आगे. मैथ्स बहुत अच्छा है मेरा, इसलिए फिर इंजीनियरिंग ही ऑप्शन बेटर लगा और कंप्यूटर साइंस में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, कंप्यूटर्स के रिलेटेड, कोडिंग के रिलेटेड. सो वही डिसाइड किया कि फिर बाद में 11th-12th में भी मैथ्स अच्छा था, अच्छा खासा हुआ मैथ्स में, तो ऑप्शन बेटर वही लगा. और मेरा बड़ा भाई सिविल इंजीनियर है, तो उसका भी थोड़ा ये था कि इंजीनियरिंग ही ले लेते हैं वो हिसाब से.
6: अच्छा अच्छा, तो ये जो आपने इंजीनियरिंग का कहा कि आपके घर में भी एक इंस्पिरेशन था कि जो आपका बड़ा भाई जो है वो इंजीनियर बन चुका है, तो सिविल इंजीनियर है, तो ये ऐसा कुछ ज़्यादा ईजी है या एक तो घर में इंजीनियर था लेकिन साथ में एक डॉक्टर भी होना चाहिए, ऐसा कुछ घर में आपको कहना नहीं था?
7: हाँ, 10th में मार्क्स अच्छे आने की वजह से बहुत था कि बायो ले लेते और मेडिकल का नीट प्रिपरेशन करते, लेकिन मुझे बायो में इंटरेस्ट नहीं था टू बी ऑनेस्ट. मैथ्स सॉल्व करने में मज़ा आता था, जितना बायो में हम लोग यूजुअली रट्टा मार के ही करते हैं मोस्टली, तो इन मैथ्स थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट के वजह से इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट था.
6: अच्छा अच्छा, तो जैसे कि कहा जाए आपने 11th-12th तो कर लिया, आपको इंजीनियरिंग भी करना था जो कि आपने 10th में ही सोच लिया था, तो जैसे 2022 में आपने पास आउट किया था, इसका मतलब है शायद आपने 2018 में आपने एडमिशन लिया था, तो बीच के तो दो साल कोरोना में ही चले गए थे 2021। तो आपकी पढ़ाई और एकेडमिक्स कैसे रही है बोलिए?
7: कोरोना के वजह से कॉलेज तो बंद हो गया था
6: जी,
7: तो बट यूट्यूब वाला जो है वो नया आया और कोरोना के वजह से ऑनलाइन क्लासेस वाला जो ये चालू हो गया था। ऊपर से ऑनलाइन कोर्सेस भी बहुत चल रहे थे जो पेड थे, जैसे सब ऑनलाइन हो गया था, तो बैंगलोर वाले क्लासेस लगाए थे मैंने, वहाँ से भी थोड़ा कोडिंग का और थोड़ा एक्सपर्टाइज बढ़ा, जैसा वाइडर मतलब नॉलेज हो गया कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है एंड ऑल, कि और लैंग्वेजेस कैसे होते हैं वो सब, तो उससे भी हेल्प हुआ फिर।
6: अच्छा अच्छा, ये तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपने कहा, लेकिन उसके साथ में कॉलेज के तरफ से यहाँ के जितने भी लेक्चरर थे, यहाँ के जो फैकल्टीज थे, उनके तरफ से आपको कैसे हेल्प मिली, आपने कैसे फिर वो?
7: हाँ, कोविड में ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे सारे, और कॉलेज के तरफ से कोर्सेज भी आ रहे थे, जैसे कोई भी रीच आउट कर रहा था कॉलेजेस को तो वो कोर्सेज भी आ रहे थे कंप्यूटर रिलेटेड ही, मतलब लैंग्वेजेस टाइप, तो वो भी पार्टिसिपेशन बढ़ गया था। ऊपर से लास्ट ईयर में भी एक आया था कि हमें लास्ट ईयर फाइनल प्रोजेक्ट बनाना जो होता है उसके लिए भी एक स्पॉन्सरशिप हुआ था अटेंडेंस फॉर्म का, मतलब जो पाइथन लैंग्वेज में था, और वो भी थोड़ा अच्छा ही बेनिफिट हुआ उसका भी।
6: अच्छा, तो कैसा है कि फिजिकल पढ़ाई करने में, जैसे कि आप समझो आप कॉलेज में आ रहे हो, साथ में सब फ्रेंड्स भी है, साथ में एक साथ बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हो, तो ये आपके लिए पहला एक्सपीरियंस था, यानी जब से आपने फर्स्ट से लेके आपने 10th तक 11th 12th तक भी आपने पढ़ाई की, लेकिन वो सब साथ में क्लास में जाके क्लासरूम में आपने पढ़ाई की थी, लेकिन एक आपके लिए पहला ऐसा एक एक्सपीरियंस था साथ में, वो भी इंजीनियरिंग के इसे था, तो आपने ये कैसे ऑनलाइन पढ़ाई को आपने कैसे मर्ज किया, आपने कैसे उसको एडजस्टमेंट किया?
7: वो ऑनलाइन वाला इजी हो गया था थोड़ा, जैसे घर पे रहते थे तो मोबाइल से ही ज्वाइन कर लो क्लास, लेक्चर्स हो जाते थे, उसके बाद जो भी मिला है वो इजी वे में हो जाता था, जैसे बैठे बैठे कर रहे हो आप, सुबह उठ के मीन्स इसमें नहीं आना पड़ रहा है कॉलेज, प्रैक्टिकल वाला नहीं हो रहा था, बस थ्योरेटिकल अच्छे से हो जा रहा था, बट प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ।
6: अच्छा,
7: वो खुद से करना पड़ रहा था।
6: तो ये जो प्रोजेक्ट करना है, प्रैक्टिकल्स करना है, तो उसको आपने फिर कैसे एडजस्टमेंट किया, कैसे आपने, या फिर आपके जितने भी क्लासमेट थे उनके साथ आपने कुछ शेयरिंग करके किया, कैसे किया?
7: हाँ, ग्रुप्स बने थे पूरे इसके लिए, लिंक्स वगैरह जिस जूम मीटिंग वगैरह आते थे वहाँ पे ही सारे रिसोर्सेस वगैरह शेयर होते थे, तो उसी से ही ग्रुप्स तो बने थे, फ्रेंड्स थे, तो हम लोग साथ में ही करते थे फिर।
6: अच्छा अच्छा, तो मित्रांनो आपण जी चर्चा करत आहोत ते मिसबा मोरवे यांच्याशी, त्या 2022 कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग मधून पासआउट आहेत आणि त्या सध्या कॅपजेमिनी पुणे येथे कार्यरत आहेत, तर आपण त्यांचाच हा जो कॅपजेमिनी पर्यंतचा प्रवास आहे तो जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत। तो ये जो 2022 तक के जो 4 साल थे, 2018 से लेके 19 से लेके शायद 22 तक की जो भी बात है, तो उसके अंदर आपने फिर कैसे सोच लिया कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, या फिर आगे कैंपस इंटरव्यू से जाना है, कहीं पे जॉब करना है? वैसे तो आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग था, उसमें कितना स्कोप है, तो इसकी जानकारी आपको कैसे मिलती थी?
7: कॉलेज से भी बताया जाता था वेरियस, मतलब कभी कभी एल्यूमिनियस भी आते थे कॉलेज में, तो वो भी बताते थे कि क्या मार्केट में चल रहा है, इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है। और फिर कोविड में जब हम लोग घर पे थे तब वाइडर नेटवर्क से कनेक्शन हुए, डिस्कॉर्ड आया था, जैसे क्लासेस इंट्रोड्यूस हो रहे थे न्यू लैंग्वेजेस के हिसाब से, वो हिसाब से फिर इंडस्ट्री समझ में आई कि बहुत वाइड है और कैंपस होंगे, ऑफ कैंपस भी होंगे, वो हिसाब से पढ़ाई वगैरह करनी पड़ेगी।
6: अच्छा अच्छा, तो ये 2022 तक आपने जैसे ही पूरी जानकारी ले ली, तो आपको फिर आगे कैसे, मतलब 2022 में आपने जैसे पास आउट किया, वैसे तो आपने पढ़ाई वगैरह एकेडमिक्स आपने कहा कि कोरोना का पीरियड रहते हुए भी आपने वो ठीक तरह से की थी, तो आपको आगे चल के कैसे फिर 2022 के बाद इमिडिएटली आपको जॉब मिल गया, या कैसे हो गया, क्योंकि अभी तो 4 साल हो रहे, 2026 स्टार्ट है, तो आपको जॉब इजीली मिल गया या आपको कुछ करना पड़ा?
7: इजीली तो नहीं बोल सकते, कोरोना का एक फ़ायदा हुआ था कि ऑफ कैंपस ज़्यादा हो रहा था ऑन कैंपस से, तो ऑफ कैंपस के वजह से मास हायरिंग हो रहा था तब, और टेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो हमने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया था, फ्रेंड्स ग्रुप स्टडी हो रही थी हमारी और हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल हुआ क्योंकि बहुत मास हायरिंग चल रहा था और बहुत बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, पुणे यूनिवर्सिटी के भी मोस्टली वो लोग बहुत मास हायरिंग उठा रहे थे, यहाँ तक आने में प्रॉब्लम हो रहा था। बट बाद में वो और खुल गया, जब कोविड थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया तो हायरिंग भी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, और फिर उनके टेस्ट होती थी पहले, तो टेस्ट क्लियर करने पे इंटरव्यू कॉल्स आ रहे थे, और फिर समझ में आया पैटर्न। स्टार्टिंग में तो रिजेक्शन ही आए दो तीन, बट बाद में पैटर्न समझा कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कैसा है और कैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो वो हिसाब से सर्च करने पे पता चला, वैसे वैसे प्रैक्टिस की।
6: तो आपने क्लासेस कौन से एक्स्ट्रा नहीं किए 2022 के बाद?
7: 2022 के बाद नहीं किए।
6: अच्छा, जो भी पढ़ाई थी वो 2022 तक थी, जितने भी किया ऑनलाइन किया और बाद में सीधा स्ट्रगल।
7: हाँ, और तो बट कंपनी में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद तो खुद से पढ़ाई करनी पड़ती है, जब तक आपको मतलब बेंच पे रखते हैं वो लोग, फिर जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिलता तब तक खुद से पढ़ाई करनी पड़ती है। बट वो ट्रेनिंग में समझ में आता है, वो मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनर होता है, तो वो इससे समझ में आ जाता है, फिर उसके हिसाब से डोमेन जो मिलता है उस पर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं आगे।
6: जी जी, तो ये आपको कैपजेमिनी में जॉब इमीडिएटली मिल गया था, फिर बाद में आपको मिल गया, कब मिल गया था ये जॉब?
7: इमीडिएटली मिला था, मतलब पास आउट होने से पहले ही।
6: पहले मिला था, कैंपस से मिला था या कैसे मिला था?
7: नहीं, तब ऑफ कैंपस बहुत ज्यादा चल रहा था,
6: तो ऑफ कैंपस चल रहा था 2022 में। अच्छा अच्छा, तो अभी ये कैपजेमिनी में आपका जो भी जॉब प्रोफाइल है, लगभग 3 साल हो रहे होंगे, तो ये जॉब प्रोफाइल आपका कैसा है, आप क्या काम करती हो और आपको मतलब कैसा भी लगता है वहाँ पे, क्योंकि जितनी भी आपने पढ़ाई की हुई थी या आप मैथ्स में भी अच्छी थी, तो आपको लगता है कि आपका ड्रीम कम्प्लीट हो रहा है?
7: हाँ, मैं जिस पे काम कर रही हूँ, मेरा अभी मेरा प्रोफाइल जावा डेवलपर है, तो वो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी ही है, डेवलपमेंट में है प्रॉपर मेरा वर्क, और 3 इयर्स से मैं कर रही हूँ कंटिन्यू, और 2 प्रमोशंस मुझे मिल गए हैं वहाँ पे।
6: 2 प्रमोशन मिल गए।
7: यस, और अभी मैं जॉब स्विच का देख रही हूँ, बट उसमें सेटिस्फाइड हूँ मैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज, वर्क वाइज, कल्चर वाइज भी अच्छी है कैपजेमिनी, तो हो जाता है।
6: अच्छा, तो आपको क्या लगता है आगे चल के और क्या हो सकता है कि आपको आपके अंदर क्या पोटेंशियल दिखता है, जिसके अंदर आपको लगता है कि इसके आगे भी आपको बढ़ने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है?
7: अपॉर्चुनिटीज का तो है, अभी मैं सर्विस बेस्ड में हूँ, मेरा टारगेट प्रोडक्ट बेस्ड है, जो कि मैं ट्राई करूँगी। उसके लिए पोटेंशियल यही चाहिए कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए बहुत ज़्यादा, और वो प्रॉब्लम्स मतलब कोडिंग जो है मेन वही कंसेप्ट है, तो कोडिंग का लॉजिक जो है वो बिल्डिंग स्ट्रांग होना चाहिए, उसी के लिए वर्क चल रहा है फिर।
6: अच्छा अच्छा, तो मिसबा जी, परत एकदा मित्रांनो मी तुम्हाला ओळख करून देतो की आपण जी चर्चा करत आहोत ते मिसबा मोरवे यांच्याशी, त्या 2022 कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग पासआउट आहेत, सध्या कॅपजेमिनीमध्ये कार्यरत आहेत आणि सध्या त्या खूप त्या ठिकाणी आनंदी पण आहेत असं सांगितलं, पण पुढे पण जाण्यासाठीचा विषय असतो। तो जनरली मैं तो ऐसा देखता हूँ कि जिसका भी कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग होता है या उनका हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि कहीं तो आउट ऑफ कंट्री जाना है, कहीं तो जाके आप हमको काम करना है। बहुत सारे लोग भी देखते हैं, हमने यहाँ पे बहुत सारे एल्यूमिनाई के इंटरव्यूज भी किए, जो कि कोई यूएसए में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई जर्मनी में है, कोई इंग्लैंड में है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कोई आपके है ख्वाब कि हम मुझे भी बाहर जाना है, कुछ तो करना है?
7: अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं भी जाऊंगी, बिकॉज बाहर का जो है टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग होता है बहुत ज़्यादा, सीखने बहुत मिलता है, उस हिसाब से आपको पैकेजेस मिलते हैं फिर, तो वो एक्सपीरियंस के लिए अगर अपॉर्चुनिटी आती है कंपनी के तरफ से तो आई विल बी हैप्पी।
6: अगर कंपनी के तरफ से अपॉर्चुनिटी आती है ये बात अलग है, लेकिन आप खुद के तरफ से कुछ ऐसा कोशिश कर रहे हो क्या कुछ ऐसा?
7: नहीं, मैं तो कोशिश नहीं कर रही हूँ।
6: अच्छा,
7: अभी घर वाले नहीं छोड़ेंगे।
6: अच्छा, तो वही घर वाले नहीं छोड़ेंगे, इसी बात से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने पहले कहा था कि कुछ होम सिकनेस होने की वजह से आफ्टर 10th आफ्टर 11th 12th आपको यही पढ़ाई करने के लिए कहा गया फैमिली के तरफ से, तो आपको अपॉर्चुनिटी कहीं और भी मिल सकती थी थ्रू आउट इंडिया पढ़ाई करने के लिए, तो अभी आप पुणे में जॉब कर रही हो, आप कहीं बाहर जाना है, तो आपको क्या लगता है कि कितना आसान होता है, कितना हार्ड होता है कि एक लड़की को बाहर आके पढ़ाई करने में, जैसे कि अपना धाराशिव स्मार्ट सिटी है, मराठवाड़ा रीजन है, तो आपको क्या लगता है कि कितना आसान है, कितना हार्ड है?
7: डिफ़िकल्ट तो है डेफिनेटली, इतनी इजीली परमिशंस नहीं मिलती है लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए भी, बट मेरे फैमिली में थोड़ा है फ्रीडम उतना कि पढ़ाई को प्रायोरिटी मिलती है. बस वही है कि इतने जल्दी, एक्चुअली मेरा इशू अलग था. 11 12th में ही मैंने डिसाइड किया था कि बाहर ही करना है, बट सीईटी का प्रॉब्लम हो गया था मेरा. फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया था, बट वो जो एजेंट होता है वो पैसे लेके भाग गया बिना फॉर्म भरे.
6: अच्छा.
7: तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था. और फिर ये कॉलेज में ऑटोनॉमस हो गया था और बाटू वाला भी था, क्योंकि डोनेशन वाला सीन नहीं था. हम लोग डोनेशन नहीं भरना चाहते थे बाहर में, कि कोई भी कॉलेज में नहीं देना था, इसलिए फिर वो हो गया. बट एक पॉइंट पे है कि पेरेंट सपोर्टिव है, बट होता है थोड़ा, सोचते तो है सोसाइटी की वजह से कि लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा, कोई गया नहीं है अभी तक, कैसे होता है, उनको पता नहीं है इतना. तो मेरा यही रहता है कि अभी मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं बताती हूँ पूरा घर पे कि ऐसे होता है, ऐसे चलता है, ये टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग है. तो अगर लड़की सीख रही है तो वो घर वालों को सिखाती है पूरा, बताना पड़ता है, तभी घर वाले भी थोड़ा फॉरवर्ड हो जाते हैं अपने साथ साथ. बट सोसाइटी को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है.
6: अच्छा, तो देखिए, मैंने आपसे पहले आसमा सैयद बोल के जो है यहीं से 2017 से पास आउट थी सीएससी से ही, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से. मैंने उनसे ही कल ही मैंने उनका इंटरव्यू किया था, ब्रॉडकास्ट किए थे हमने. तो हमने उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा था, आपसे भी यही पूछते हैं. और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी लड़की हमारे पास आती है तो उससे भी हम यही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आजकल लड़कियों की तरफ से नज़रियात चेंज हो गया है, क्योंकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है, हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही है. तो मैं वही क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूँगा, कितना लाजमी है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक आम लड़की जो आती है पढ़ाई करने के लिए और एक मुस्लिम कम्युनिटी से जो लड़की आती है, तो उसमें से डिफरेंस कैसा रहता है और आप कैसे सोचती हो कि पढ़ाई को कैसे लेना चाहिए? क्योंकि ये आपका जो मैसेज है वो बाकी भी लड़कियों के पास पहुंचे और वो भी लड़कियां इंस्पायर हो जाए.
7: डिफरेंस तो है, मुस्लिम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जल्दी शादी को प्रायोरिटी रखते हैं.
6: जी,
7: अगर घर वालों को उतना समझ में आ जाए या फिर लड़की उतनी पोटेंशियल हो लड़की के पास कि वो घर वालों को समझा दे कि मतलब अच्छे स्कोर में है वो लड़की, और जैसे उसका उतना है कि उसको करियर ओरिएंटेड उसको बनना है, तो वो अपने पेरेंट्स को समझा सकती है, थोड़ा खुद के लिए स्टैंड ले सकती है. पढ़ाई बहुत नेसेसरी हो गई है आजकल, क्योंकि देखते ही है हम लोग कि वुमेन का इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है.
6: बिल्कुल,
7: बहुत प्रॉब्लम्स आती है, खुद से करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए और ऊपर से खर्चे भी बहुत बढ़ चुके हैं, तो खुद का खर्चा खुद उठाओ, यही मेरा ये रहता है. ऊपर से अगर लड़की पढ़ रही है, मतलब वो घर वालों को भी पढ़ा रही है, उनके घर वाले भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट उनको इंडस्ट्री का तो नॉलेज पता चल रहा है डे टू डे, जो अभी ट्रेंडिंग 21st century 22nd century में क्या होगा वो उनको अप टू डेट है वो पेरेंट्स. तो वो भी एक हो जाता है कि सोसाइटी का, अगर तुम सोसाइटी को भी पढ़ा ही रहे हो, मतलब घर से शुरुआत करते हैं. और प्रायोरिटी लड़कियों को रखनी चाहिए पढ़ाई, ज़्यादा फोकस दूसरे इस पर नहीं करके पढ़ाई को अगर प्रायोरिटी दिया और उसमें खुद को सक्सेसफुल किया तो वो अलग ही खुशी है, खुद के लिए ही खुशी है वो. घर वालों को तो आप देते ही हो, बट खुश पहले स्टार्ट खुद के लिए ही होता है. तो वही है कि
6: मुझे बढ़िया बात क्या लगी मिसबा आपके, कि जैसे आपने कहा था कि आपका बड़ा भाई सिविल इंजीनियर है, आप भी इंजीनियर अभी कैपजेमिनी में जॉब कर रहे हो, साथ में आपकी बहन भी शायद आई हुई है, तो आपके फैमिली में एजुकेशन के लिए काफ़ी तवज्जो दी जाती है ऐसा मुझे लगता है. तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए कि आपके फैमिली में आपके पिताजी क्या करते हैं, बाकी माताजी ने आपको कैसे सपोर्ट किया वो भी बोलिए.
7: हाँ, मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, हमारे बहुत सारे बिजनेसेस रह चुके हैं, अभी हमारा वाटर प्लांट है. और मम्मी तो हाउसवाइफ ही है, बट मम्मी का यही था कि उनको पढ़ाई का मौका इतना मिला नहीं पहले, तो उनको था कि बेटियों को मिलना चाहिए मौका और उनको खुद का अपना खुद का दम पे कुछ करना चाहिए. उन्होंने उन बहुत सपोर्ट किया. और पापा का तो था ही, वो तो उनको तो डॉक्टर चाहिए था एक
6: लेकिन आपने इंजीनियर, लेकिन आपकी छोटी बहन आई, उनका नाम भी थोड़ा सा बोलिए, और वो अगर डॉक्टर बनना चाहे तो हो सकता है वो ड्रीम कंप्लीट.
7: इसका नाम नुजत है, अभी 12th पास आउट हुआ है उसका, बट उसको भी इंटरेस्ट नहीं है.
6: अरे अभी नीट के एग्जाम भी होने वाली थी शायद, तो
7: हाँ वो तो स्कैम हो गया.
6: अच्छा,
7: वो अभी आर्किटेक्ट
6: आर्किटेक्चर, अच्छा ठीक है, लेकिन एजुकेशन में कुछ तो आगे बढ़ रहे, तो आपकी जर्नी कैसे रही है ये बोलिए मिसबा जी, कि जैसे आप 10th से लेके 10th यहीं पे पढ़ाई की होगी, 11th 12th भी यहीं से पढ़ाई की, फिर बाद में यहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज, तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कम्प्लीट किया, बाद में पुणे में जाके अकेली रह के जॉब करना, फिर बाद में घर वालों ने कैसे आपको देखा, कन्विंस किया, या आपने घर वालों को कैसे कन्विंस किया, अभी कैसे बातचीत चलती है कि यस आई एम इंडिपेंडेंटली मैं उतना कर सकती हूँ, ऐसा कुछ आपने उनको आ गया यकीन आपके फैमिली को?
7: हाँ यकीन तो है फैमिली को कि अभी इंडिपेंडेंट हो गए, ऊपर से स्विच का भी चल रहा है, तो वो भी बताते हैं कि कैसा मार्केट हो गया है, कैसे चल रहा है, अप एंड डाउन्स वगैरह, वह सपोर्ट तो करते हैं घर वाले। और हाँ वो था कि पूरा एजुकेशन यहाँ पे हुआ है, पुणे में फर्स्ट टाइम जाना, मतलब थोड़ा घर वालों को भी डाउट था कि हो पाएगा कि नहीं, ऊपर से कोविड होके गया था रिसेंटली, तो वो भी डर, बट थोड़ा आगे स्टेप अप होके करना पड़ता है चीज़ें। थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे भी स्ट्रगल हुआ वहाँ पे, पूरा न्यू एरिया और पूरे आईटी प्रोफेशनल्स के साथ रहना, एंड इवन एमएनसी, बहुत बड़ी एमएनसी में काम करना, मतलब लाइक 2,000-3,000 प्लस एम्प्लॉयज़ आते हैं वहाँ पे, वहाँ का माहौल बहुत अलग है, तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट अभी अच्छा लगता है।
6: अच्छा, तो अपने दिमाग की स्तर जो होता है, जैसे कि 10th तक यहाँ पढ़ाई करने में एक दिमाग की एक लेवल रहती है, आप जब यहाँ पे इंजीनियरिंग को आए तो बहुत सारे बाकी के स्टूडेंट होंगे, और जब आप पुणे में गए हो तो वहाँ पे एक अलग स्तर है, तो आपको क्या लगता है कि अपना खुद का माइंड कितना डेवलप हो जाता है एक आम लड़की के मुकाबले? जैसे कि अगर आपकी कोई क्लासमेट होगी 10th की 11th 12th की, वो यहीं पे कुछ तो पढ़ाई करी है, या हो सकता है कि शादी भी हो गई होगी उसकी, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि कितना हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा आउटर वर्ल्ड जो है जानने का वो कितनी ताकत बढ़ जाती है?
7: हाँ, आउटर वर्ल्ड का बहुत चीज़ें पता चलती है, जैसे आप बात कैसे करते हो, आपका रहन सहन भी चेंज हो जाता है, थिंकिंग भी चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पे रहते हो तो लिमिटेड सोचते हो आप, इतना पता नहीं चलता आपको, बट उनके साथ रहते हो तो रियलिटी भी समझ में आती है, लोग अलग अलग तरह मतलब तरफ से आते हैं ना, इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आउट ऑफ महाराष्ट्र के हैं, विदर्भ साइड के हैं, तो उनका कल्चर कैसा है वो भी जानने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप रह रहे हो तो इतना सर्कल बढ़ता नहीं है आपका, वहाँ पे जाते हो तो वाइड सर्कल हो जाता है, बहुत लोगों से पहचान हो जाती है, जैसे अभी जॉब कर रहे हो तो सीनियर्स टीम में होते हैं, उनसे पता चलता है कि कैसे मार्केट मतलब इंडस्ट्री कैसा है, वो सब वो तो सीनियर लेवल के हैं, 10+ एक्सपीरियंस वाले हैं, तो उनकी थिंकिंग पता चलती है, वो समझाते हैं फिर जूनियर्स को भी कि ऐसे ऐसे करके प्रिपरेशन करना होता है ये वो, तो वो टॉकिंग अलग लेवल का हो जाता है। यहाँ पे फिर हम लोग लिमिटेड टॉकिंग नहीं करते, वो मार्केट लेवल का टॉकिंग, इंडस्ट्री लेवल का टॉकिंग, मतलब हायर लेवल का टॉकिंग हो जाता है, नॉलेज वाइज भी ग्रोथ हो जाती है
6: और आगे बढ़ने की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो मिसबा, जैसे कि अभी तक मैंने जितने भी हमने बातचीत की है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सॉफ्टली स्पोकन हो, आप बहुत मतलब क्या बोलते हो, एक अलग लहजे से बात कर रही हो, जो कि बहुत लहजा कम देखा जाता है, तो उस लहजे में बात कर रही हो, तो आप ऐसी ही हो या कुछ नटखट लड़की भी हो जो कि 10th 11th 12th में ऐसे खामोश अपने अपने इसमें रहना, या कुछ नटखट भी ऐसा कुछ किया है?
7: नहीं, मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, फ्रेंड्स बहुत कम बनाती हूँ, और सॉफ्ट स्पोकन ही हूँ।
6: अच्छा,
7: बट
6: कभी कभी ऐसा होता है कि माइक के सामने आने के बाद आमतौर पे हमने देखा है कि सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत नटखट होते हैं, ऐसा कुछ
7: नहीं? नहीं, बट घूमने फिरने का वगैरह है शौक, तो अभी पुणे में है तो जाते हैं ट्रिप्स पे वगैरह।
6: अच्छा, अच्छा,
7: वो एंजॉयमेंट करते हैं, बट सॉफ्ट स्पोकन ही हूँ।
6: अच्छा, और जैसे कि आपने 11th 12th और बाद में इंजीनियरिंग के यहाँ के 4 साल, लेकिन उसमें से भी 2 साल कोरोना के चले गए, लेकिन अदर एक्टिविटी जैसे कि हॉबीज है, कल्चरल है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इसमें कुछ इंटरेस्ट है और कुछ किया है?
7: इंटरेस्ट वाइज तो है, इतना टाइम नहीं मिलता था, बट स्पोर्ट्स में बैडमिंटन वगैरह हम लोग खेलते हैं जब भी टाइम मिलता है, अभी भी वहाँ पे भी टाइम रहता है तो हम लोग जाते हैं करने के लिए बैडमिंटन वगैरह, और एक्टिविटीज वगैरह भी करते हैं ऐसे।
6: अच्छा, तो ये स्पोर्ट्स बैडमिंटन आपने कहा, और बाकी इसमें भी आप जाते हो, ट्रिप पे भी जाते हो, ऐसा कहा, लेकिन जहाँ तक हमने देखा जाए कि अगर जो 11th 12th का है, इंजीनियरिंग का है, तो बहुत सारे लोगों को मूवी सॉन्ग सुनना ऐसे भी मतलब रहती है, हॉबीज रहती है, तो आपको ऐसा कुछ है?
7: हाँ मूवी सीरीज वगैरह तो
6: आप कहाँ पे देखती हो?
7: मैं नेटफ्लिक्स पे, पहले तो टेलीग्राम रहता था, अभी नेटफ्लिक्स पे देखते हैं हम लोग कोरियन सीरीज वगैरह।
6: अच्छा, तो ये जो हॉबीज है, मूवीज है, तो आप जब पढ़ाई करते थे उसी वक्त भी आप देखा करते थे, कैसा था?
7: हाँ थोड़ा बहुत तो देखते ही थे, और कोविड था तो इतना कॉलेज का बर्डन तो था नहीं कि।
6: लेकिन कौन सी ज्यादा हॉबी अच्छी है, कि गाने सुनना या मूवीज देखना?
7: गाने इतने मैं सुनती नहीं हूँ। अच्छा। सीरीज में ही ज्यादा इंटरेस्ट है, वो भी थ्रिलर वाले। तो
6: थ्रिलर वाले? अरे आप तो सॉफ्ट स्पोकन हो। हाँ। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ काफी शाय और बिल्कुल एक क्या कहते हैं उसको, एक इंट्रोवर्ट भी, ऐसा आपने कहा था तो ऐसा। और थ्रिलर मूवीज, ये तो पूरा अलग कॉन्ट्रास्ट हो गया 180 डिग्री। अच्छा, तो फिर भी अगर आप कभी कॉलेज में आती होंगी या कोई हिंदी मूवी देखी होगी या कोई ऐसा, तो ऐसे कौन से ऐसे गाने हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, या समझो आपके घर वालों ने भी, आपके फैमिली ने भी आपको हमेशा सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सब सही सही गया होगा या कभी कुछ अप एंड डाउन्स भी आए होंगे ना, कि कुछ डाउन्स भी आया होगा, लगा होगा यार क्या इंजीनियरिंग करना है वरना छोड़ दो, चलो घर वाले शादी कर रहे तो करो ना, ऐसा कुछ होगा कभी?
7: नहीं, शादी का इतना ये नहीं था मुझे, मुझे पहले से ही अपने इंडिपेंडेंट होना था पहले, उसके बाद शादी। तो अभी तक भी नहीं है।
6: हाँ, तो लेकिन फिर भी ऐसा कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन
7: तो,
6: आ गया?
7: हाँ, फ्रस्ट्रेशन तो आता है, अभी भी आता है जॉब में, कि बहुत ज्यादा लोड हो जाता है तो लगता है कि छोड़ दो।
6: अच्छा, तो फिर उस वक्त क्या करते हो आप?
7: इस वक्त कुछ नहीं, बस थोड़ा शांत हो जाते है क्या।
6: नहीं, बहुत सारे तो ऐसे है कि कोई समझो जैसे कि कोई धार्मिक आध्यात्मिक यानी मजहबी किताबें पढ़ना, कहीं वो सुनना, या कोई करता है कि मूवीज मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना या मोटिवेशनल लेक्चर सुनना, ऐसा करता है, ऐसा कभी कुछ करते हो आप? या
7: रिलीजियस तो हूँ मैं, तो वही फिर हमारा जो भी रहता है सूरा वगैरह सुन के थोड़ा शांत हो जाते हैं।
6: अच्छा, बस इतना ही है, कभी ऐसे गाने सुनना है उससे रिलेट नहीं करते हो आप आपसे? अच्छा, तो ये सब कुछ देखा जाए तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि आपको अभी तक आने में, आपको आगे बढ़ने में ज्यादा आपको क्या कहते हैं उसको हेल्प की है लाइफ में, या आपका खुद का मोटिवेशन है, फैमिली है, या कुछ है, या ऐसा क्या 2-4-5 गोल्डन वर्ड्स है जो कि आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे यहाँ पे, कि मिसबा मोरवे आप जो कैपजेमिनी में है, हो सकता है आगे चल के 5-10 सालों में कहीं और हो, यूएसए में भी हो सकती है, कहीं और कहीं पे भी हो सकती है, जैसे आपने कहा अपॉर्चुनिटी मिली तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या ऐसे गोल्डन वर्ड्स है जो कि हम आप लोगों को सुनाना चाहेंगे?
7: मोटिवेशन या तो खुद के लिए होना चाहिए कि आपको खुद से इंडिपेंडेंट होना है, वो एक मोटिवेशन है।
6: आपको खुद को ये समझ में आना चाहिए
7: आपके लिए क्या प्रायोरिटी में है। इंडियन माइंडसेट तो पता ही है फैमिली का, कि अगर ग्रेजुएशन होता है तो शादी करवा देते हैं, तो अगर आपको उससे हटके निकलना है, खुद का करियर बनाना है, या चाहे वो थोड़े दिनों बाद बिजनेस में भी कन्वर्ट करना हो, बट स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो करना पड़ता है सबको, तो खुद के लिए अगर कर रहे हो तो वो हो जाता है। फैमिली का भी मोटिवेशन चाहिए कि आपको उनको बेटर लाइफ देनी है कि नहीं, वो मोटिवेशन काम आता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, फैमिली को भी अच्छी लाइफ देना जरूरी है, तो वो भी हो जाता है।
6: ये रियलाइजेशन हमको होना जरूरी है।
7: यस।
6: और कौन से वक्त में होना जरूरी है, स्कूल के टाइम में या कॉलेज में या जब हम जॉब को जाते हैं तब, ये कौन सा पीरियड होता है कि जब ये रियलाइजेशन होना चाहिए हर एक बच्चे को?
7: मुझे लगता है कॉलेज में ही, मिडल ऑफ कॉलेज, जब आप मतलब लेते हो एडमिशन इंजीनियरिंग में या फिर कोई भी ग्रेजुएशन में, तो आपको आपका करियर दिखना चाहिए, क्योंकि वही पॉइंट है जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, वरना अगर आपने वो पीरियड मिस कर दिया तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा, डिफिकल्टी होगा, जॉब सर्चिंग भी बहुत डिफिकल्ट है आजकल के टाइम में।
6: अच्छा।
7: इतना मार्केट बूस्ट नहीं हो रहा है, तो अगर आपको खुद से है वो प्रैक्टिस अर्ली स्टार्ट करना, खुद से मोटिवेटेड रहना।
6: अच्छा।
7: वो बेटर है।
6: अच्छा, तो लास्ट 2 क्वेश्चन है, जैसे कि आजकल इस सोसाइटी में या दुनिया में कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो कि इससे दूर है, वो है सोशल मीडिया, तो आप सोशल मीडिया को कैसे देखती हो, क्योंकि 11th 12th यहीं पे होगा, इंजीनियरिंग हो गया, आपके हाथ में भी स्मार्टफोन है, तो उसका कैसा यूज होना चाहिए एक लड़की, मुस्लिम कम्युनिटी से लड़की, और इतना पढ़ाई करके भी आगे बढ़ रही है, तो उसका सबका मिला जुला के आप क्या कहना चाहोगी?
7: सोशल मीडिया का यूज़ होना चाहिए अप टू डेट होने के लिए, बट इतना भी नहीं, लिमिट में। सोशल मीडिया को हम लोग यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत, इन्फ्लुएंसर्स का टाइम है, तो वो तो पता ही है, बट अच्छे से यूज़ किया तो हो जाता है उसका।
6: किसके ऊपर डिपेंड है?
7: हमारे ऊपर ही डिपेंड है। मेरा अगर इंस्टाग्राम देखोगे तो अभी मैं जॉब स्विच कर रही हूँ, आधे से ज़्यादा चैनल्स मेरे मतलब फॉलोअर्स, मैंने जिसको फॉलो किया है वो सारा उसी का नॉलेज देते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस बताते हैं ये वो। तो अगर मैं स्क्रॉल भी कर रही हूँ मेरा 15 मिनट्स, तो मुझे हाफ से ज़्यादा रील्स वो उन्हीं के आएंगे कि स्टडी ही है, स्टडी का ही मटेरियल ज़्यादा आएगा। और थोड़ा बहुत बाहर का आता है, वो थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए चाहिए ही, जैसे, बट इतना भी नहीं कि पूरा दिन आप लेके बैठ रहे हो।
6: अच्छा,
7: फिर लिंक्डइन
6: उसी को लाइफ नहीं बनानी है।
7: हाँ, लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आप कनेक्शंस बनाओ, वो बहुत काम का है एक्चुअली, आपको बाद में पता चलता है जब स्विच वगैरह का टाइम आता है, रेफरल्स बहुत काम आते हैं, जितने कनेक्शंस आपके ज़्यादा होंगे वो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप लिंक्डइन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहाँ पे भी पढ़ाई के ही होते हैं और पूरे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तो फॉलोवर्स आप मतलब कनेक्शंस बढ़ा सकते हो, रीच बढ़ा सकते हो अपनी।
6: अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रक्टिव यूज़ करने से अच्छा है कि प्रोडक्टिव यूज़ करिए, और वो आपके हाथ में है खुद के। तो ठीक है, तो मिसबा मोरवे जी, इनसे हम बातचीत कर रहे थे, 2022 की सीएससी पास आउट है, अभी वो कैपजेमिनी में जॉब कर रही है पुणे में। तो जाते जाते आप कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो सुनवाना है, यानी आपकी आवाज़ भी अच्छी है तो आप गाना चाहे तो गा सकती हो, या फिर सजेस्ट कर सकती हो कि हम ये इंटरव्यू के बाद में हम वो सॉन्ग को हर एक को सुनवाएंगे, कि ये आपकी चॉइस है। बोलो।
7: बेखौफ आजाद जीना है मुझे।
6: तो कहने का मतलब यह है कि ये गाना आप सुनवाना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं मिसबा जी आपको बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, और आपको मैं विशेष भी करना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे आपके जो सोच है वह हमारे साथ शेयर की है, और आप आगे बढ़ते रहे ऐसे ही, और बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते रहे, जैसे कि आपने, आपके बहन ने आपको इंस्पायर किया, आपके फैमिली ने आपको इंस्पायर किया, वैसे आप भी हर एक को इंस्पायर करते रहे, ऐसे मैं आपको विशेष देता हूँ बहुत सारी। मिसबा जी, आपने जो आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर की, इसलिए मैं आपका रेडियो तेरना टीम की ओर से शुक्रिया करना चाहूँगा।
7: पहले तो थैंक यू कि अपॉर्चुनिटी दी इंटरव्यू के लिए, और अच्छा है ये काम जो स्टार्ट किया है जॉब, लाइक और लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा इंटरव्यू से, तो नाइस वर्क, थैंक यू।
6: थैंक यू। आणि आपण ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज, श्रोते रेडिओ तेरणा ट्यून करा 90.4 FM वर, किंवा आपण अँड्रॉइड फोन किंवा ॲपल फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरवर रेडिओ तेरणा हे ॲप उपलब्ध आहे। आपण रेडिओ गार्डनवरही रेडिओ तेरणा ऐकू शकता, त्यासाठी पृथ्वीच्या ग्लोबवरील उस्मानावाला जर टच केलं तर आपल्याला ऐकायला येईल केवळ रेडिओ तेरणा। आपण http://radio.coe.usmanabad.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन ऐकू शकता रेडिओ तेरणा। आपण आमच्या फेसबुक पेज आणि इंस्टाला लाईक करा, फॉलो करा, तसेच आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा, त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970500 9970500900। ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज़।

0: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून। टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coe usmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
1: व्यावसायिक शिक्षण, स्वकमाईचं साधन।
0: तेरणा ITI धाराशिव येथे 10वी पास नापासांना वेल्डर, कोपार, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिक, इलेक्ट्रिशियन आणि वायरमन या अभ्यासक्रमांना ऑनलाइन प्रवेश सुरू।
1: आता यश तुमचं। संपर्क प्राचार्य, तेरणा ITI, MIDC परिसर, धाराशिव। मोबाईल 82 75 92 59 00।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी है जहाँ मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: ऐका ना, तुम्ही PM सूर्यघर मोफत बिजली योजनेबद्दल ऐकलंय का?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल 0 करने का भी है।
4: यामुळे तुमचं घर सूर्यघर बनतं, म्हणजे वीज बिल 0, आणि जास्तीची वीज तयार झाली तर ग्रिडला विकून पैसेही कमवू शकता। मग बसलात काय, आताच रजिस्टर करा PM सूर्यघर.gov.in वर।
6: हर घर सूर्यघर।
0: श्रोते हो, आपला अन्नदाता आपला बळीराजा। बळीराजाच्या हाताला आता रेडिओ तेरणाची साथ। शेती पद्धती, आधुनिक शेती आणि नवीन तंत्रज्ञान याविषयी परिपूर्ण माहिती ऐकूयात आमच्या शिवार वार्ता या कार्यक्रमात। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM।

0: काढशील का ग पाळण्याची दोरी वडशील का ग
1: चला चला गंगा रामी आताच येते
0: मोर हो गंगो बाई तुझ्या मागून मी येतो।
2: तुम्हाला माहित आहे का, जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये आरोग्य विषयक मोफत सेवा हे आजही एक स्वप्नच आहे, पण भारतात मात्र हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे। आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून 60 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार दिले जात आहे आणि 19,000 पेक्षा जास्त जनऔषधी केंद्रांच्या माध्यमातून तब्बल 90% कमी किमतीत औषधे उपलब्ध करून दिली जात आहेत।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 वर्षे विश्वासाची, विकासाची, जनकल्याणाची।
4: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून। टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coe usmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।
5: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: व्यावसायिक शिक्षण, स्वकमाईचं साधन।
4: तेरणा ITI धाराशिव येथे 10वी पास नापासांना वेल्डर, कोपार, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिक, इलेक्ट्रिशियन आणि वायरमन या अभ्यासक्रमांना ऑनलाइन प्रवेश सुरू।
6: आता यश तुमचं। संपर्क प्राचार्य, तेरणा ITI, MIDC परिसर, धाराशिव। मोबाईल 82 75 92 59 00।

कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम, हमने खाई है कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है, पटाखे की लड़ी है, आंखों में गुस्सा है।

हर भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा। और

छोरा गंगा किनारे बाला, ओ छोरा गंगा किनारे बाला।

0: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
1: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं है, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा. रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून. टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4. रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coe usmanabad.ac.in वेबसाईट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता. ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. ऐकत रहा, आनंदी रहा.
1: व्यावसायिक शिक्षण, स्वकमाईचं साधन.
0: तेरणा ITI धाराशिव येथे 10वी पास नापासांना वेल्डर, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिक, इलेक्ट्रिशियन आणि वायरमन या अभ्यासक्रमांना ऑनलाइन प्रवेश सुरू.
1: आता यश तुमचं. संपर्क प्राचार्य, तेरणा ITI, MIDC परिसर, धाराशिव. मोबाईल 82 75 92 59 00.
2: मित्रांनो, आपण ऐकत आहात रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज. मित्रांनो, तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत जाणून घेत असतो आपण अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास ज्यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून आपलं शिक्षण पूर्ण केलेलं असतं आणि आता आयुष्यामध्ये यशाच्या मार्गावर असतात. त्यांचं हे जे यश असतं, त्यांचं जे हे मार्गक्रमण असतं, ते आपल्यासाठी प्रेरणादायक असतं आणि म्हणूनच तेरणेची प्रेरणा या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपण अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा जीवन प्रवास जाणून घेत असतो. आज आपण रेडिओ तेरणाच्या स्टुडिओमध्ये निमंत्रित केलेलं आहे मिसबा मोरवे यांना. त्या 2022 कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंगमधून पासआउट आहेत. आता सध्या ते कॅप जेमिनी या कंपनीमध्ये पुण्यामध्ये कार्यरत आहेत आणि त्याच्या अगोदर त्यांचा 11-12 एज्युकेशन हे भोसले हायस्कूलमध्ये झालेलं आहे. मिसबा, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ रेडिओ तेरणा के स्टूडियो में.
3: थैंक यू
2: मिसबा. जैसे आज आप कॉलेज पे आई हो, जैसे 2022 में पास आउट हो, तो अभी अभी आप पास आउट हो, तो एक 2 से लेकर 3 साल हो रहे, तो आप फिर 3 सालों में पहली बार आई हो इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में. अच्छा, तो आपने कैसे ये सोच लिया था कि आपको तेरणा इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ाई करनी है?
3: ये आउट ऑफ होम टाउन नहीं जाना था. एक ही कॉलेज है यहाँ पे और वो भी अच्छा ऑटोनोमस हुआ था तब, तो इसलिए यहीं पे एडमिशन ले लिया.
2: अच्छा अच्छा.
3: बीटेक भी स्टार्ट हो गया था यहाँ पे वो टाइम पे.
2: अच्छा, तो आपकी जो पहली पढ़ाई है 11th 12th की, वो भोसले स्कूल में हो गई थी. तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग से पहले उसके बारे में बोलिए कि आपने 11th 12th आपका कैसा रहा था और आपने कब ये दिमाग में ले लिया कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है?
3: 10th में अच्छे परसेंटेज आए थे बट 11th 12th में इतना ये नहीं था कि क्या करना है आगे. मैथ्स बहुत अच्छा है मेरा, इसलिए फिर इंजीनियरिंग ही ऑप्शन बेटर लगा और कंप्यूटर साइंस में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, कंप्यूटर्स के रिलेटेड, कोडिंग के रिलेटेड. सो वही डिसाइड किया कि फिर बाद में 11th 12th में भी मैथ्स अच्छा था, अच्छा खासा हुआ मैथ्स में, तो ऑप्शन बेटर वही लगा. और मेरा बड़ा भाई सिविल इंजीनियर है, तो उसका भी थोड़ा ये था कि इंजीनियरिंग ही ले लेते हैं वो हिसाब से.
2: अच्छा अच्छा. तो ये जो आपने इंजीनियरिंग का कहा कि आपके घर में भी एक इंस्पिरेशन था कि जो आपका बड़ा भाई जो है वो इंजीनियर बन चुका है, तो सिविल इंजीनियर है, तो ये ऐसा कुछ ज़्यादा ईजी है या एक तो घर में इंजीनियर था लेकिन साथ में एक डॉक्टर भी होना चाहिए, ऐसा कुछ घर में आपको कहना नहीं था?
3: हाँ, 10th में मार्क्स अच्छे आने की वजह से बहुत था कि बायो ले लेते और मेडिकल का नीट प्रिपरेशन करते, लेकिन मुझे बायो में इंटरेस्ट नहीं था टू बी ऑनेस्ट. मैथ्स सॉल्व करने में मज़ा आता था जितना बायो में हम लोग यूजुअली रट्टा मार के ही करते हैं मोस्टली, तो इन मैथ्स थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट के वजह से इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट था.
2: अच्छा अच्छा. तो जैसे कि कहा जाए आपने 11th 12th तो कर लिया, आपको इंजीनियरिंग भी करना था जो कि आपने 10th में ही सोच लिया था, तो जैसे 2022 में आपने पास आउट किया था, इसका मतलब है शायद आपने 2018 में आपने एडमिशन लिया था, तो बीच के तो 2 साल कोरोना में ही चले गए थे 2020-21. तो आपकी पढ़ाई और एकेडमिक्स कैसे रही है बोलिए?
3: कोरोना के वजह से कॉलेज तो बंद हो गया था
2: जी,
3: तो बट यूट्यूब वाला जो है वो नया आया और कोरोना के वजह से ऑनलाइन क्लासेस वाला जो ये चालू हो गया था, ऊपर से ऑनलाइन कोर्सेस भी बहुत चल रहे थे जो पेड थे, जैसे सब ऑनलाइन हो गया था, तो बैंगलोर वाले क्लासेस लगाए थे मैंने, वहाँ से भी थोड़ा कोडिंग का और थोड़ा एक्सपर्टाइज बढ़ा, जैसा वाइडर मतलब नॉलेज हो गया कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है एंड ऑल, कि और लैंग्वेजेस कैसे होते हैं वो सब, तो उससे भी हेल्प हुआ फिर।
2: अच्छा अच्छा, ये तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपने कहा, लेकिन उसके साथ में कॉलेज के तरफ से यहाँ के जितने भी लेक्चरर थे, यहाँ के जो फैकल्टीज थे, उनके तरफ से आपको कैसे हेल्प मिली, आपने कैसे फिर वो?
3: हाँ, कोविड में ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे सारे, और कॉलेज के तरफ से कोर्सेज भी आ रहे थे, जैसे कोई भी रीच आउट कर रहा था कॉलेजेस को तो वो कोर्सेज भी आ रहे थे कंप्यूटर रिलेटेड ही, मतलब लैंग्वेजेस टाइप, तो वो भी पार्टिसिपेशन बढ़ गया था। ऊपर से लास्ट ईयर में भी एक आया था कि हमें लास्ट ईयर फाइनल प्रोजेक्ट बनाना जो होता है उसके लिए भी एक स्पॉन्सरशिप हुआ था अटेंडेंस फॉर्म का, मतलब जो पाइथन लैंग्वेज में था, और वो भी थोड़ा अच्छा ही बेनिफिट हुआ उसका भी।
2: अच्छा, तो कैसा है कि फिजिकल पढ़ाई करने में, जैसे कि आप समझो आप कॉलेज में आ रहे हो, साथ में सब फ्रेंड्स भी है, साथ में एक साथ बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हो, तो ये आपके लिए पहला एक्सपीरियंस था, यानी जब से आपने फर्स्ट से लेके आपने टेंथ तक इलेवन ट्वेल्थ तक भी आपने पढ़ाई की, लेकिन वो सब साथ में क्लास में जाके क्लासरूम में आपने पढ़ाई की थी, लेकिन एक आपके लिए पहला ऐसा एक एक्सपीरियंस था साथ में, वो भी इंजीनियरिंग के इससे था, तो आपने ये कैसे ऑनलाइन पढ़ाई को आपने कैसे मर्ज किया, आपने कैसे उसको एडजस्टमेंट किया?
3: वो ऑनलाइन वाला इजी हो गया था थोड़ा, जैसे घर पर रहते थे तो मोबाइल से ही ज्वाइन कर लो क्लास, लेक्चर्स हो जाते थे, उसके बाद जो भी मिला है वो इजी वे में हो जाता था, जैसे बैठे बैठे कर रहे हो आप, सुबह उठ के मीन्स इसमें नहीं आना पड़ रहा है कॉलेज, प्रैक्टिकल वाला नहीं हो रहा था, बस थ्योरेटिकल अच्छे से हो जा रहा था, बट प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ।
2: अच्छा,
3: वो खुद से करना पड़ रहा था।
2: तो ये जो प्रोजेक्ट करना है, प्रैक्टिकल्स करना है, तो उसको आपने फिर कैसे एडजस्टमेंट किया, कैसे आपने, या फिर आपके जितने भी क्लासमेट थे उनके साथ आपने कुछ शेयरिंग करके किया, कैसे किया?
3: हाँ, ग्रुप्स बने थे पूरे इसके लिए, लिंक्स वगैरह जिस जूम मीटिंग वगैरह आते थे वहाँ पे ही सारे रिसोर्सेस वगैरह शेयर होते थे, तो उसी से ही ग्रुप्स तो बने थे, फ्रेंड्स थे, तो हम लोग साथ में ही करते थे फिर।
2: अच्छा अच्छा, तो मित्रांनो आपण जी चर्चा करत आहोत ते मिसबा मोरवे यांच्याशी, त्या 2022 कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंगमधून पास आउट आहेत आणि त्या सध्या कॅपजेमिनी पुणे येथे कार्यरत आहेत, तर आपण त्यांचाच हा जो कॅपजेमिनीपर्यंतचा प्रवास आहे तो जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत। तो ये जो 2022 तक के जो चार साल थे, 2018 से लेके 19 से लेके शायद 22 तक की जो भी बात है, तो उसके अंदर आपने फिर कैसे सोच लिया कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, या फिर आगे कैंपस इंटरव्यू से जाना है, कहीं पे जॉब करना है? वैसे तो आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग था, उसमें कितना स्कोप है, तो इसकी जानकारी आपको कैसे मिलती थी?
3: कॉलेज से भी बताया जाता था वेरियस, मतलब कभी कभी एल्यूमिनियस भी आते थे कॉलेज में, तो वो भी बताते थे कि क्या मार्केट में चल रहा है, इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है। और फिर कोविड में जब हम लोग घर पे थे तब वाइडर नेटवर्क से कनेक्शन हुए, डिस्कॉर्ड आया था, जैसे क्लासेस इंट्रोड्यूस हो रहे थे न्यू लैंग्वेजेस के हिसाब से, वो हिसाब से फिर इंडस्ट्री समझ में आई कि बहुत वाइड है और कैंपस होंगे, ऑफ कैंपस भी होंगे, वो हिसाब से पढ़ाई वगैरह करनी पड़ेगी।
2: अच्छा अच्छा, तो ये 2022 तक आपने जैसे ही पूरी जानकारी ले ली, तो आपको फिर आगे कैसे, मतलब 2022 में आपने जैसे पास आउट किया, वैसे तो आपने पढ़ाई वगैरह एकेडमिक्स आपने कहा कि कोरोना का पीरियड रहते हुए भी आपने वो ठीक तरह से की थी, तो आपको आगे चल के कैसे फिर 2022 के बाद इमिडिएटली आपको जॉब मिल गया, या कैसे हो गया, क्योंकि अभी तो चार साल हो रहे, 2026 स्टार्ट है, तो आपको जॉब इजीली मिल गया, आपको कुछ करना पड़ा?
3: इजीली तो नहीं बोल सकते, कोरोना का एक फायदा हुआ था कि ऑफ कैंपस ज्यादा हो रहा था ऑन कैंपस से, तो ऑफ कैंपस के वजह से मास हायरिंग हो रहा था तब, और टेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो हमने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया था, फ्रेंड्स ग्रुप स्टडी हो रही थी हमारी, और हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल हुआ क्योंकि बहुत मास हायरिंग चल रहा था और बहुत बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, पुणे यूनिवर्सिटी के भी मोस्टली वो लोग बहुत मास हायरिंग उठा रहे थे, यहाँ तक आने में प्रॉब्लम हो रहा था, बट बाद में वो और खुल गया जब कोविड थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया, तो हायरिंग भी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, और फिर उनके टेस्ट होती थी पहले, तो टेस्ट क्लियर करने पे इंटरव्यू कॉल्स आ रहे थे, और फिर समझ में आया पैटर्न, स्टार्टिंग में तो रिजेक्शन ही आए दो तीन, बट बाद में पैटर्न समझा कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कैसा है और कैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो वो हिसाब से सर्च करने पे पता चला, वैसे वैसे प्रैक्टिस की।
2: तो आपने क्लासेस कौन से एक्स्ट्रा नहीं किए 2022 के बाद?
3: 2022 के बाद नहीं किए।
2: अच्छा, जो भी पढ़ाई थी वो 2022 तक थी, जितने भी किया ऑनलाइन किया और बाद में सीधा स्ट्रगल।
3: हाँ, और तो बट कंपनी में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद तो खुद से पढ़ाई करनी पड़ती है, जब तक आपको मतलब बेंच पे रखते हैं वो लोग, फिर जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिलता तब तक खुद से पढ़ाई करनी पड़ती है। बट वो ट्रेनिंग में समझ में आता है, वो मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनर होता है तो वो इससे समझ में आ जाता है, फिर उसके हिसाब से डोमेन जो मिलता है उस पर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं आगे।
2: जी जी, तो ये आपको कैपजेमिनी में जॉब इमीडिएटली मिल गया था, फिर बाद में आपको मिल गया, कब मिल गया था ये जॉब?
3: इमीडिएटली मिला था, मतलब पास आउट होने से पहले ही।
2: पहले ही मिला था, कैंपस से मिला था या कैसे मिला था?
3: नहीं, तब ऑफ कैंपस बहुत ज्यादा चल रहा था,
2: तो ऑफ कैंपस चल रहा था 2022 में। अच्छा अच्छा, तो अभी ये कैपजेमिनी में आपका जो भी जॉब प्रोफाइल है, लगभग 3 साल हो रहे होंगे, तो ये जॉब प्रोफाइल आपका कैसा है, आप क्या काम करती हो और आपको मतलब कैसा भी लगता है वहाँ पे, क्योंकि जितनी भी आपने पढ़ाई की हुई थी या आप मैथ्स में भी अच्छी थी, तो आपको लगता है कि आपका ड्रीम कम्प्लीट हो रहा है?
3: हाँ, मैं जिस पे काम कर रही हूँ, मेरा अभी मेरा प्रोफाइल जावा डेवलपर है, तो वो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी ही है, डेवलपमेंट में है प्रॉपर मेरा वर्क, और 3 इयर्स से मैं कर रही हूँ कंटिन्यू, और 2 प्रमोशंस मुझे मिल गए हैं वहाँ पे।
2: प्रमोशन मिल गए,
3: यस। और अभी मैं जॉब स्विच का देख रही हूँ, बट उसमें सेटिस्फाइड हूँ मैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज, वर्क वाइज, कल्चर वाइज भी अच्छी है कैपजेमिनी, तो हो जाता है।
2: अच्छा, तो आपको क्या लगता है आगे चल के और क्या हो सकता है, कि आपको आपके अंदर क्या पोटेंशियल दिखता है जिसके अंदर आपको लगता है कि इसके आगे भी आपको बढ़ने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है?
3: अपॉर्चुनिटीज का तो है, अभी मैं सर्विस बेस्ड में हूँ, मेरा टारगेट प्रोडक्ट बेस्ड है, जो कि मैं ट्राई करूंगी। उसके लिए पोटेंशियल यही चाहिए कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए बहुत ज़्यादा, और वो प्रॉब्लम्स मतलब कोडिंग जो है मेन वही कंसेप्ट है, तो कोडिंग का लॉजिक जो है वो बिल्डिंग स्ट्रांग होना चाहिए, उसी के लिए वर्क चल रहा है फिर।
2: अच्छा अच्छा, तो मिसबा जी, परत एकदा मित्रांनो मी तुम्हाला ओळख करून देतो की आपण जी चर्चा करत आहोत ते मिसबा मोरवे यांच्याशी, त्या 2022 कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग पासआउट आहेत, सध्या कॅपजेमिनीमध्ये कार्यरत आहेत आणि सध्या त्या खूप त्या ठिकाणी आनंदी पण आहेत असं सांगितलं, पण पुढे पण जाण्यासाठीचा विषय असतो। तो जनरली मैं तो ऐसा देखता हूं कि जिसका भी कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग होता है या उनका हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि कहीं तो आउट ऑफ कंट्री जाना है, कहीं तो जाके आप हमको काम करना है। बहुत सारे लोग भी देखते हैं, हमने यहाँ पे बहुत सारे एल्यूमिनाई के इंटरव्यूज भी किए, जो कि कोई यूएसए में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई जर्मनी में है, कोई इंग्लैंड में है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कोई आपके है ख्वाब कि हम मुझे भी बाहर जाना है, कुछ तो करना है?
3: अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं भी जाऊंगी, बिकॉज बाहर का जो है टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग होता है बहुत ज़्यादा, सीखने बहुत मिलता है, उस हिसाब से आपको पैकेजेस मिलते हैं फिर, तो वो एक्सपीरियंस के लिए इफ़ अगर अपॉर्चुनिटी आती है कंपनी के तरफ से तो आई विल बी हैप्पी।
2: अगर कंपनी के तरफ से अपॉर्चुनिटी आती है ये बात अलग है, लेकिन आप खुद के तरफ से कुछ ऐसा कोशिश कर रहे हो क्या कुछ ऐसा?
3: नहीं, मैं तो कोशिश नहीं कर रही हूँ।
2: अच्छा,
3: अभी घर वाले नहीं छोड़ेंगे।
2: अच्छा, तो वही घर वाले नहीं छोड़ेंगे, इसी बात से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने पहले कहा था कि कुछ होम सिकनेस होने के वजह से आफ्टर 10th आफ्टर 11th 12th आपको यही पढ़ाई करने के लिए कहा गया फैमिली की तरफ से, तो आपको अपॉर्चुनिटी कहीं और भी मिल सकती थी थ्रू आउट इंडिया पढ़ाई करने के लिए, तो अभी आप पुणे में जॉब कर रही हो, आप कहीं बाहर जाना है, तो आपको क्या लगता है कि कितना आसान होता है कितना हार्ड होता है कि एक लड़की को बाहर आके पढ़ाई करने में, जैसे कि अपना धाराशिव स्मार्ट सिटी है, मराठवाड़ा रीजन है, तो आपको क्या लगता है कि कितना आसान है कितना हार्ड है?
3: डिफ़िकल्ट तो है डेफिनेटली, इतनी इजीली परमिशंस नहीं मिलती है लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए भी, बट मेरे फैमिली में थोड़ा है फ्रीडम उतना कि पढ़ाई को प्रायोरिटी मिलती है, बस वही है कि इतने जल्दी, एक्चुअली मेरा इशू अलग था, 11th 12th में ही मैंने डिसाइड किया था कि बाहर ही करना है, बट सीईटी का प्रॉब्लम हो गया था मेरा, फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया था बट वो जो एजेंट होता है वो पैसे लेके भाग गया बिना फॉर्म भरे।
2: अच्छा,
3: तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, और फिर ये कॉलेज में ऑटोनॉमस हो गया था और बाटू वाला भी था, क्योंकि डोनेशन वाला सीन नहीं था, हम लोग डोनेशन नहीं भरना चाहते थे बाहर में कि कोई भी कॉलेज में नहीं देना था, इसलिए फिर वो हो गया, बट एक पॉइंट पे है कि पेरेंट्स सपोर्टिव है, बट होता है थोड़ा, सोचते तो है सोसाइटी की वजह से कि लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा, कोई गया नहीं है अभी तक, कैसे होता है, उनको पता नहीं है इतना. तो मेरा यही रहता है कि अभी मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं बताती हूँ पूरा घर पे कि ऐसे होता है, ऐसे चलता है, ये टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग है. तो अगर लड़की सीख रही है तो वो घर वालों को सिखाती है, पूरा बताना पड़ता है, तभी घर वाले भी थोड़ा फॉरवर्ड हो जाते हैं अपने साथ साथ. बट सोसाइटी को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है.
2: अच्छा, तो देखिए, मैंने आपसे पहले आसमा सैयद बोल के जो है यहीं से 2017 से पास आउट थी, सीएससी से ही, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से. मैंने उनसे ही कल ही मैंने उनका इंटरव्यू किया था, ब्रॉडकास्ट किए थे हमने. तो हमने उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा था, आपसे भी यही पूछते हैं. और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी लड़की हमारे पास आती है तो उससे भी हम यही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आजकल लड़कियों की तरफ से नज़रियात चेंज हो गया है, क्योंकि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है, हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही है. तो मैं वही क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूँगा, कितना लाजमी है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक आम लड़की जो आती है पढ़ाई करने के लिए और एक मुस्लिम कम्युनिटी से जो लड़की आती है, तो उसमें से डिफरेंस कैसा रहता है, और आप कैसे सोचती हो कि पढ़ाई को कैसे लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो मैसेज है वो बाकी भी लड़कियों के पास पहुँचे और वो भी लड़कियाँ इंस्पायर हो जाए.
3: डिफरेंस तो है, मुस्लिम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जल्दी शादी को प्रायोरिटी रखते हैं.
2: जी,
3: अगर घर वालों को उतना समझ में आ जाए या फिर लड़की उतनी पोटेंशियल हो लड़की के पास कि वो घर वालों को समझा दे कि मतलब अच्छे स्कोर में है वो लड़की, और जैसे उसका उतना है कि उसको करियर ओरिएंटेड उसको बनना है, तो वो अपने पेरेंट्स को समझा सकती है, थोड़ा खुद के लिए स्टैंड ले सकती है. पढ़ाई बहुत नेसेसरी हो गई है आजकल, क्योंकि देखते ही है हम लोग कि वुमेन का इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है.
2: बिल्कुल,
3: बहुत प्रॉब्लम्स आती है खुद से करने के लिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, और ऊपर से खर्चे भी बहुत बढ़ चुके हैं, तो खुद का खर्चा खुद उठाओ, यही मेरा ये रहता है. ऊपर से अगर लड़की पढ़ रही है, मतलब वो घर वालों को भी पढ़ा रही है, उनके घर वाले भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट उनको इंडस्ट्री का तो नॉलेज पता चल रहा है, डे टू डे जो अभी ट्रेंडिंग 21st सेंचुरी 22nd सेंचुरी में क्या होगा वो उनको अप टू डेट है वो पेरेंट्स. तो वो भी एक हो जाता है कि सोसाइटी का, अगर तुम सोसाइटी को भी पढ़ा ही रहे हो, मतलब घर से शुरुआत करते हैं. और प्रायोरिटी लड़कियों को रखनी चाहिए पढ़ाई, ज़्यादा फोकस दूसरे इस पर नहीं करके पढ़ाई को अगर प्रायोरिटी दिया और उसमें खुद को सक्सेसफुल किया तो वो अलग ही खुशी है, खुद के लिए ही खुशी है वो. घर वालों को तो आप देते ही हो, बट खुश पहले स्टार्ट खुद के लिए ही होता है. तो वही है कि
2: मुझे बढ़िया बात क्या लगी मिसबा आपके, कि जैसे आपने कहा था कि आपका बड़ा भाई सिविल इंजीनियर है, आप भी इंजीनियर अभी कैपजेमिनी में जॉब कर रहे हो, साथ में आपकी बहन भी शायद आई हुई है, तो आपके फैमिली में एजुकेशन के लिए काफ़ी तवज्जो दी जाती है ऐसा मुझे लगता है. तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए कि आपके फैमिली में आपके पिताजी क्या करते हैं, बाकी माताजी ने आपको कैसे सपोर्ट किया वो भी बोलिए.
3: हाँ, मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, हमारे बहुत सारे बिजनेसेस रह चुके हैं, अभी हमारा वाटर प्लांट है. और मम्मी तो हाउसवाइफ ही है, बट मम्मी का यही था कि उनको पढ़ाई का मौका इतना मिला नहीं पहले, तो उनको था कि बेटियों को मिलना चाहिए मौका, और उनको खुद का अपना खुद का दम पे कुछ करना चाहिए. उन्होंने उन बहुत सपोर्ट किया. और पापा का तो था ही, वो तो उनको तो डॉक्टर चाहिए था एक
2: लेकिन आपने इंजीनियर, लेकिन आपकी छोटी बहन आई, उनका नाम भी थोड़ा सा बोलिए, और वो अगर डॉक्टर बनना चाहे तो हो सकता है वो ड्रीम कंप्लीट.
3: इसका नाम नुजत है, अभी 12th पास आउट हुआ है उसका, बट उसको भी इंटरेस्ट नहीं है.
2: अरे अभी नीट के एग्जाम भी होने वाली थी शायद, तो कुछ
3: वो तो स्कैम हो गया.
2: अच्छा,
3: वो अभी आर्किटेक्चर.
2: हाँ. अच्छा ठीक है, लेकिन एजुकेशन में कुछ तो आगे बढ़ रहे. तो हाँ. आपकी जर्नी कैसे रही है, ये बोलिए मिसबा जी, कि जैसे आप 10th से लेके 10th यहीं पे पढ़ाई की होगी, 11th 12th भी यहीं से पढ़ाई की, फिर बाद में यहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज, तेरना इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, बाद में पुणे में जाके अकेली रह के जॉब करना, फिर बाद में घर वालों ने कैसे आपको देखा, कन्विंस किया, या आपने घर वालों को कैसे कन्विंस किया, अभी कैसे बातचीत चलती है कि यस आई एम इंडिपेंडेंटली मैं उतना कर सकती हूँ, ऐसा कुछ आपने उनको आ गया यकीन आपके फैमिली को?
3: हाँ यकीन तो है फैमिली को कि अभी इंडिपेंडेंट हो गए, ऊपर से स्विच का भी चल रहा है तो वो भी बताते हैं कि कैसा मार्केट हो गया है, कैसे चल रहा है, अप एंड डाउन्स वगैरह। वह सपोर्ट तो करते हैं घर वाले। और हाँ वो था कि पूरा एजुकेशन यहाँ पे हुआ है, पुणे में फर्स्ट टाइम जाना, मतलब थोड़ा घर वालों को भी डाउट था कि हो पाएगा कि नहीं, ऊपर से कोविड होके गया था रिसेंटली तो वो भी डर, बट थोड़ा आगे स्टेप अप होके करना पड़ता है चीज़ें। थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे भी स्ट्रगल हुआ वहाँ पे, पूरा न्यू एरिया और पूरे आईटी प्रोफेशनल्स के साथ रहना, एंड इवन एमएनसी, बहुत बड़ी एमएनसी में काम करना, मतलब लाइक 2,000-3,000 प्लस एम्प्लॉयज़ आते हैं वहाँ पे, वहाँ का माहौल बहुत अलग है, तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट अभी अच्छा लगता है।
2: अच्छा, तो अपने दिमाग की स्तर जो होता है, जैसे कि 10th तक यहाँ पढ़ाई करने में एक दिमाग की एक लेवल रहती है, आप जब यहाँ पे इंजीनियरिंग को आए तो बहुत सारे बाकी के स्टूडेंट होंगे, और जब आप पुणे में गए हो तो वहाँ पे एक अलग स्तर है, तो आपको क्या लगता है कि अपना अपना खुद का माइंड कितना डेवलप हो जाता है एक आम लड़की के मुकाबले? जैसे कि अगर आपकी कोई क्लासमेट होगी 10th की, 11th, 12th की, वो यहीं पे कुछ तो पढ़ाई करी है, या हो सकता है कि शादी भी हो गई होगी उसकी, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि कितना हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा आउटर वर्ल्ड जो है जानने का वो कितनी ताकत बढ़ जाती है?
3: हाँ, आउटर वर्ल्ड का बहुत चीज़ें पता चलती है, जैसे आप बात कैसे करते हो, आपका रहन सहन भी चेंज हो जाता है, थिंकिंग भी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे रहते हो तो लिमिटेड सोचते हो आप, इतना पता नहीं चलता आपको, बट उनके साथ रहते हो तो रियलिटी भी समझ में आती है, लोग अलग अलग तरह मतलब तरफ से आते हैं ना। इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आउट ऑफ महाराष्ट्र के हैं, विदर्भ साइड के हैं, तो उनका कल्चर कैसा है वो भी जानने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप रह रहे हो तो इतना सर्कल बढ़ता नहीं है आपका, वहाँ पे जाते हो तो वाइड सर्कल हो जाता है, बहुत लोगों से पहचान हो जाती है। जैसे अभी जॉब कर रहे हो तो सीनियर्स टीम में होते हैं, उनसे पता चलता है कि कैसे मार्केट मतलब इंडस्ट्री कैसा है, वो सब, वो तो सीनियर लेवल के हैं, 10+ एक्सपीरियंस वाले हैं, तो उनकी थिंकिंग पता चलती है, वो समझाते हैं फिर जूनियर्स को भी कि ऐसे ऐसे करके प्रिपरेशन करना होता है ये वो, तो वो टॉकिंग अलग लेवल का हो जाता है। यहाँ पे फिर हम लोग लिमिटेड टॉकिंग नहीं करते, वो मार्केट लेवल का टॉकिंग, इंडस्ट्री लेवल का टॉकिंग, मतलब हायर लेवल का टॉकिंग हो जाता है, नॉलेज वाइज भी ग्रोथ हो जाती है
2: और आगे बढ़ने की भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो मिसबा, जैसे कि अभी तक मैंने जितने भी हमने बातचीत की है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सॉफ्टली स्पोकन हो, आप बहुत मतलब क्या बोलते हो, एक अलग लहजे से बात कर रही हो जो कि बहुत लहजा देखा जाता है, तो उस लहजे में बात कर रही हो, तो आप ऐसी ही हो या कुछ नटखट लड़की भी हो जो कि 10th 11th 12th में ऐसे खामोश अपने अपने इसमें रहना, या कुछ नटखट भी ऐसा कुछ किया है?
3: नहीं, मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, फ्रेंड्स बहुत कम बनाती हूँ और सॉफ्ट स्पोकन ही हूँ।
2: अच्छा,
3: बट
2: कभी कभी ऐसा होता है कि माइक के सामने आने के बाद आमतौर पे हमने देखा है कि सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत नटखट होते हैं, ऐसा कुछ?
3: नहीं नहीं, बट घूमने फिरने का वगैरह है शौक, तो अभी पुणे में है तो जाते हैं ट्रिप्स पे वगैरह।
2: अच्छा, अच्छा,
3: वो एंजॉयमेंट करते हैं, बट सॉफ्ट स्पोकन ही हूँ।
2: अच्छा, और जैसे कि आपने 11th 12th और बाद में इंजीनियरिंग के यहाँ के 4 साल, लेकिन उसमें से भी 2 साल कोरोना के चले गए, लेकिन अदर एक्टिविटी जैसे कि हॉबीज है, कल्चरल है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इसमें कुछ इंटरेस्ट है और कुछ किया है?
3: इंटरेस्ट वाइज तो है, इतना टाइम नहीं मिलता था, बट स्पोर्ट्स में बैडमिंटन वगैरह हम लोग खेलते हैं जब भी टाइम मिलता है, अभी भी वहाँ पे भी टाइम रहता है तो हम लोग जाते हैं करने के लिए बैडमिंटन वगैरह, और एक्टिविटीज़ वगैरह भी करते हैं ऐसे।
2: अच्छा, तो ये स्पोर्ट्स बैडमिंटन आपने कहा और बाकी इसमें भी आप जाते हो, ट्रिप पे भी जाते हो, ऐसा कहा, लेकिन जहाँ तक हमने देखा जाए कि अगर जो 11th 12th का है, इंजीनियरिंग का है, तो बहुत सारे लोगों को मूवी सॉन्ग सुनना ऐसे भी मतलब रहती है, हॉबीज रहती है, तो आपको ऐसा कुछ है?
3: हाँ, मूवी सीरीज वगैरह तो देखते हैं।
2: आप कहाँ पे देखती हो?
3: मैं नेटफ्लिक्स पे, पहले तो टेलीग्राम रहता था, अभी नेटफ्लिक्स पे देखते हैं हम लोग कोरियन सीरीज वगैरह।
2: अच्छा, तो ये जो हॉबीज है, मूवीज है, तो आप जब पढ़ाई करते थे उसी वक्त भी आप देखा करते थे, कैसा था?
3: हाँ, थोड़ा बहुत तो देखते ही थे, और कोविड था तो इतना कॉलेज का बर्डन तो था नहीं कि।
2: लेकिन कौन सी ज्यादा हॉबी अच्छी है, कि गाने सुनना या मूवीज देखना?
3: गाने इतने मैं सुनती नहीं हूँ, सीरीज में ही ज्यादा इंटरेस्ट है, वो भी थ्रिलर वाले। तो
2: थ्रिलर वाले? अरे आप तो सॉफ्ट स्पोकन हो। हाँ। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ काफी शाय और बिल्कुल एक क्या कहते हैं उसको, एक इंट्रोवर्ट भी ऐसा आपने कहा था, तो ऐसा। और थ्रिलर मूवीज ये तो पूरा अलग कॉन्ट्रास्ट हो गया 180 डिग्री। अच्छा, तो फिर भी अगर आप कभी कॉलेज में आती होंगी या कोई हिंदी मूवी देखी होगी या कोई ऐसा, तो ऐसे कौन से ऐसे गाने हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, या समझो आपके घर वालों ने भी आपके फैमिली ने भी आपको हमेशा सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सब सही सही गया होगा या कभी कुछ अप एंड डाउन्स भी आए होंगे ना, कि कुछ डाउन्स भी आए होगा, लगा होगा क्या इंजीनियरिंग करना है वरना छोड़ दो, चलो घर वाले शादी कर रहे तो करो ना, ऐसा कुछ होगा कभी?
3: नहीं, शादी का इतना ये नहीं था मुझे, मुझे पहले से ही अपने इंडिपेंडेंट होना था पहले, उसके बाद शादी, तो अभी तक भी नहीं है।
2: हाँ, तो लेकिन फिर भी ऐसा कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन आ गया?
3: हाँ, फ्रस्ट्रेशन तो आता है, अभी भी आता है जॉब में कि बहुत ज्यादा लोड हो जाता है तो लगता है कि छोड़ दो।
2: अच्छा, तो फिर उस वक्त क्या करते हो आप?
3: इस वक्त कुछ नहीं, बस थोड़ा शांत हो जाते है क्या।
2: नहीं, बहुत सारे तो ऐसे है कि कोई समझो जैसे कि कोई धार्मिक आध्यात्मिक यानी मजहबी किताबें पढ़ना, कहीं वो सुनना, या कोई करता है कि मूवीज मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना या मोटिवेशनल लेक्चर सुनना, ऐसा करता है, ऐसा कभी कुछ करते हो आप? या
3: रिलीजियस तो हूँ मैं, तो वही फिर हमारा जो भी रहता है सूरा वगैरह सुन के थोड़ा शांत हो जाते हैं।
2: अच्छा, बस इतना ही है, कभी ऐसे गाने सुनना है उससे रिलेट नहीं करते हो आप से? अच्छा, तो ये सब कुछ देखा जाए तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि आपको अभी तक आने में, आपको आगे बढ़ने में ज़्यादा आपको क्या कहते हैं उसको हेल्प की है लाइफ में, या आपका खुद का मोटिवेशन है, फैमिली है, या कुछ है ऐसा, क्या दो चार पांच गोल्डन वर्ड्स है जो कि आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे यहाँ पे कि मिसबा मोरवे आप जो कैपजेमिनी में है, हो सकता है आगे चल के 5-10 सालों में कहीं और हो, यूएसए में भी हो सकती है, कहीं और कहीं पे भी हो सकती है, जैसे आपने कहा अपॉर्चुनिटी मिली, तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या ऐसे गोल्डन वर्ड्स है जो कि हम आप लोगों को सुनाना चाहेंगे?
3: मोटिवेशन या तो खुद के लिए होना चाहिए कि आपको खुद से इंडिपेंडेंट होना है, वो एक मोटिवेशन
2: आपको खुद को ये समझ में आना चाहिए।
3: आपके लिए क्या प्रायोरिटी में है? इंडियन माइंडसेट तो पता ही है फैमिली का कि अगर ग्रेजुएशन होता है तो शादी करवा देते हैं, तो अगर आपको उससे हटके निकलना है, खुद का करियर बनाना है, या चाहे वो थोड़े दिनों बाद बिजनेस में भी कन्वर्ट करना हो, बट स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो करना पड़ता है सबको, तो खुद के लिए अगर कर रहे हो तो वो हो जाता है। फैमिली का भी मोटिवेशन चाहिए कि आपको उनको बेटर लाइफ देनी है कि नहीं, वो मोटिवेशन काम आता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, फैमिली को भी अच्छी लाइफ देना जरूरी है, तो वो भी हो जाता।
2: ये रियलाइजेशन हमको होना जरूरी है।
3: यस,
2: और कौन से वक्त में होना जरूरी है? स्कूल के टाइम में या कॉलेज में या जब हम जॉब को जाते हैं तब? ये कौन सा पीरियड होता है कि जब ये रियलाइजेशन होना चाहिए हर एक बच्चे को?
3: मुझे लगता है कॉलेज में ही, मिडल ऑफ कॉलेज, जब आप मतलब लेते हो एडमिशन इंजीनियरिंग में या फिर कोई भी ग्रेजुएशन में, तो आपको आपका करियर दिखना चाहिए, क्योंकि वही पॉइंट है जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, वरना अगर आपने वो पीरियड मिस कर दिया तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा, डिफ़िकल्टी होगा, जॉब सर्चिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट है आजकल के टाइम में।
2: अच्छा।
3: इतना मार्केट बूस्ट नहीं हो रहा है, तो अगर आपको खुद से है वो प्रैक्टिस अर्ली स्टार्ट करना, खुद से मोटिवेटेड रहना,
2: अच्छा,
3: वो बेटर है।
2: अच्छा, तो लास्ट दो क्वेश्चन है, जैसे कि आजकल इस सोसाइटी में या दुनिया में कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो कि इससे दूर है, वो है सोशल मीडिया, तो आप सोशल मीडिया को कैसे देखती हो, क्योंकि 11th 12th यहीं पर होगा, इंजीनियरिंग हो गया, आपके हाथ में भी स्मार्टफोन है, तो उसका कैसा यूज होना चाहिए एक लड़की, मुस्लिम कम्युनिटी से लड़की, और इतना पढ़ाई करके भी आगे बढ़ रही है, तो उसका सबका मिला जुला के आप क्या कहना चाहोगी?
3: सोशल मीडिया का यूज़ होना चाहिए अप टू डेट होने के लिए, बट इतना भी नहीं, लिमिट में। सोशल मीडिया को हम लोग यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत, इन्फ्लुएंसर्स का टाइम है, तो वो तो पता ही है, बट अच्छे से यूज किया तो हो जाता है उसका।
2: ये किसके ऊपर डिपेंड है?
3: हमारे ऊपर ही डिपेंड है मेरा। अच्छा। अगर इंस्टाग्राम देखोगे तो अभी मैं जॉब स्विच कर रही हूँ, आधे से ज्यादा चैनल्स मेरे मतलब फॉलोअर्स, मैंने जिसको फॉलो किया है वो सारा उसी का नॉलेज देते है, इंटरव्यू क्वेश्चन बताते है ये वो। तो अगर मैं स्क्रोल भी कर रही हूँ मेरा 15 मिनट्स, तो मुझे हाफ से ज्यादा रील्स वो उन्हीं के आएंगे कि स्टडी ही है, स्टडी का ही मटेरियल ज्यादा आएगा। और थोड़ा बहुत बाहर का आता है वो थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए चाहिए ही, जैसे बट इतना भी नहीं कि पूरा दिन आप लेके बैठ रहे हो।
2: अच्छा।
3: फिर लिंक्डइन
2: उसी को लाइफ नहीं बनानी है।
3: हाँ, लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आप कनेक्शंस बनाओ, वो बहुत काम का है एक्चुअली। आपको बाद में पता चलता है जब स्विच वगैरह का टाइम आता है, रेफरल्स बहुत काम आते हैं। जितने कनेक्शंस आपके ज़्यादा होंगे वो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप लिंक्डइन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहाँ पे भी पढ़ाई के ही होते हैं और पूरे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तो फॉलोवर्स आप मतलब कनेक्शंस बढ़ा सकते हो, रीच बढ़ा सकते हो अपनी।
2: अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रक्टिव यूज़ करने से अच्छा है कि प्रोडक्टिव यूज़ करिए और वो आपके हाथ में खुद के।
3: yes.
2: तो ठीक है, तो मिसबा मोरवे जी, इनसे हम बातचीत कर रहे थे, 2022 की सीएससी पास आउट है, अभी वो कैपजेमिनी में जॉब कर रही है पुणे में। तो जाते जाते आप कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो सुनवाना, यानी आपकी आवाज़ भी अच्छी है तो आप गाना चाहे तो गा सकती हो, या फिर सजेस्ट कर सकती हो कि हम ये इंटरव्यू के बाद में हम वो सॉन्ग को हर एक को सुनवाएंगे, कि ये आपकी चॉइस है। और
3: बेखौफ आजाद जीना है मुझे,
2: तो कहने का मतलब यह है कि ये गाना आप सुनवाना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं मिसबा जी आपको बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, और आपको मैं विशेष भी करना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे आपके आपके जो सोच है वह हमारे साथ शेयर की है, और आप आगे बढ़ते रहे ऐसे ही और बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते रहे, जैसे कि आपने, आपके बहन ने आपको इंस्पायर किया, आपके फैमिली ने आपको इंस्पायर किया, वैसे आप भी हर एक को इंस्पायर करते रहे, ऐसे मैं आपको विशेष देता हूँ बहुत सारी। मिसबा जी, आपने जो आपकी जर्नी हमारे साथ शेयर की, इसलिए मैं आपका रेडियो तेरना टीम की ओर से शुक्रिया करना चाहूँगा।
3: पहले तो थैंक यू कि अपॉर्चुनिटी दी इंटरव्यू के लिए, और अच्छा है ये काम जो स्टार्ट किया है जॉब, लाइक और लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा इंटरव्यूज से, तो नाइस वर्क, थैंक यू।
2: थैंक यू। आणि आपण ऐकत राहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज। श्रोते हो, रेडिओ तेरणा ट्यून करा 90.4 FM वर, किंवा आपण अँड्रॉइड फोन किंवा ॲपल फोन वापरत असाल तर गुगल प्ले स्टोअर किंवा ॲप स्टोअरवर रेडिओ तेरणा हे ॲप उपलब्ध आहे। आपण रेडिओ गार्डनवरही रेडिओ तेरणा ऐकू शकता, त्यासाठी पृथ्वीच्या ग्लोबवरील उस्मानावरला जर टच केलं तर आपल्याला ऐकायला येईल केवळ रेडिओ तेरणा। आपण http://radio.coe.usmanabad.ac.in या वेबसाईटला भेट देऊन ऐकू शकता रेडिओ तेरणा। आपण आमच्या फेसबुक पेज आणि इंस्टाला लाईक करा, फॉलो करा, तसेच आपल्याला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर कळवा, त्यासाठी व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9970 500 9970 500 900। ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज़।

धाम हिलता इश्कहता एटम वाम है गंगू तारुण्य तुझ बे भाम हिलता इश्कहता एटम

राम हिलता इश्क हता एटम वाम हे गंगू तारुण्य तुझ बे भाम हिलता इश्क हता एटम

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चल ले तो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए खुल।

0: क्या है ये दुश्मन जमाना।
1: अरे सुन,
0: हाँ बता।
1: सबको मिल

0: अच्छा,
1: अरे हाँ वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ?
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
0: चल पगली,
1: फिर सुनो तो आगे हमारी।

0: है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना, धक धक धक। पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं।
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: क्या कह रही हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो,
1: ना
0: सुनो तो,
1: ना।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: زرعها بمسكراي
1: بلي زرعها بمسكراي بلي زرعها بمسكراي.

0: वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? Yes, 1, 2, 3, 4. La la la la la la la. बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया. Musicians, आप लोग मत बजाइए. Ready? 1, 2, 3.

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

बुजुर्गों ने

चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

के मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से